போலவே அதி கால் கதா கொட்ட தேவி அன்பான் சேரும் சிபி மகிமைய ஏ கால் விசில் லபாதனவாயத போலவே திபின விருக்ஷ கதா கொட்ட தேவி அன்பான் சேவ நமஸ்கார கரணவாயத யமேக் ஒபட நமஸ்கார கரண பாதா கரின்னே நாம் யமேக் தேவி அன்பான் சேர கரண நமஸ்காரே நதர கரண்னே நாம் ira anda tharaka deviyan wahanseta himi namaskare un wahanse rosawana wayata hallelujah obata namaskara weva sarva parakrama yanan wahanse obata samana kisivek natha obage mahime laba gannata swarga walin wetunu deviya deva dootiya porakati ඔබට හිමි මහිමේ අත් කර ගන්නට පොළවේ විවිධ මිනිසයන් තරඟ කරති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයට අත ගැසිය හැකි ඒ කාටද? පොළවේ දෙවිවරුන් නැයි කියා ගන්නා 33 කෝටියක් දෙවිවරුන් යයි කියා ගන්නා ස්වර්ග වලින් වැටුණු අසුත්ත දේව දූතයන් ඔබගේ මහිමයට අත ගසන්නට හදන්නේ. और स्वकीय गौरव उदसा स्वकीय लाभ उदसा मनुष्यन रवटन नोय नमुत ओब पमना मनुष्यन का सदा कल हिम प्रेम करन देवियन महंसे ओबगे सलसु जनगत है के कातग बहु देना देवियन महंसेव प्रतिक्षेप कर तम सित्वल मार्गवल हरि यमिन सिलिन्ने නමුතුන් වහන්සේ කියන සේක රන්ද රිදීද මාගේය මම කැමති කෙනාට ඒවා දෙමි කැමති කෙනාගෙන් ඒවා ගන්නෙමි පොළවේ රජවරු පත් කරන්නේද පහ කරන්නේද මමය